0: मुझे को आता नहीं था
1: ये हम कर
0: आसाना चल के वो अब कर ले
1: कभी अलग ही
0: होगा बाप ओके
2: और जो कुछ है
3: Yeah.